0: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস করে আল মুমিনু লিল মুমিনি কাল বুনিয়ান ইয়াশুদ্দু বা'দুহু বা'দা মানে এম মুমিনাকু আনে মুমিনাকং এহি তরিবে ভাগে উরিবু মুগা বিনা ইফাদে এই এ বিনাগে এব্যাং আনে বায়া বারা গাদকান দে ফাদান
1: ಮೀ ದಿವೆಹಿರಾಜ್ಯಗಡು ತಿಂಗಡಿ ಫನರ ಮಿನಿಟ್ ಕೊಮಿಗೆ ನೆಸ್ತೀನಿ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದೋಗುತ್ತಿಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದವಾ
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್

0: নিউলেমুং ওকে মন্দা সফা তাকে
1: দুনিয়ে দেখে ফাওয়া পড়েতি পার তাকে
0: ইনসাফকে তারা দম মলি উম্মেদ বদল করলে শখসিয়াতুম
1: রেগনুকে হামহিমে কামুগা রাইয়েতুংগে হাল বেল্লুম নুকুমে ডাঙ্গুলু বি কোম্বে ফ্লেতো
0: রোমিনা ফারসিংগে বড়তি রাসকান্তা কুডক কুজেসফি কোন্দিডারেতো
1: এই হামহিকানি তারিখ বিবাহক তাকিনু
0: এই দুনিয়াকে চাট বদল করলে হাকিকে হাদিসাতকে
1: এ হাদিসাতকা এ বাহকতবনি নীলকোরগে সেরিং ফেশিগে আন্দালুসকে পর্বতকা হামিয়া ফিতুরিফ কুরি পোশি কমমে হোম দুহেকে হেন্দনু আগগড় তিরিহু
0: রিপিট অঙ্গার দহগে বেন্দরু একে জহায়রু
1: আদি হোনি দুহগে রোসি হাগড় তিরিহু
0: এঙ্গা 741 কিলোহার্টজ মিডিয়াম ওয়েভ আদি 89 মেগাহার্টজ এফএম ব্যান্ড
2: উম্মতেক এনাগে হিতা
3: ইসলাম কওম তক গামি দেনে গত আমল কুরে মন দানি দেনতি হগ নোয়া বায়ক দেবিজকং ফাহুম মি এঙ্গুনি দিম ফাহুম এঙ্গুনি এম বেজকম গাওয়ানামা এদমরিং গে তেরে গে দেগতকং এব ইশারা কুরে ফাবে
0: ফিকহু সুন্নাহ
2: কম মে হুকুর দোহে গে মেন্দুর কুরি এগার গডি ফনারে
4: এংহা 47.9 কিলোহার্টজ মিডিয়াম ওয়েভ আদি 89 মেগাহার্টজ এফএম ব্যান্ড
2: ಹಮಾಯಕಣಿ ದಿವೆಹಿರಾಜ್ ಜೇಗಾಡು
4: ಇಂತಿಜಾರ್ ಕೊಲ್ಲವ್ವ
5: ಹಿಮಬಿಹಿ ಜೆಹಿಫಾವಾ ಮೀಹಕು ಕೆಸ್ಸಾ ಕಿಂಬಿಹಿ ಅಳುಮುಂ ವ್ಯಾಗೆತೆರೆಯ ವೈರಸ್ ಫೆತುರೆಗೆಂದಿಯುಮುಂ ಹಿಮಬಿಹಿ ಫೆತುರೆ ಬಂದು ತನೆಗ್ಗಾನಮ ದೆಗಡಿರೆಂ ಹಾಯಿರುವಂದೆಂ ವ್ಯಾಗೆತೆರೆಗ ವೈರಸ್ ಹೊರೆ
6: ವೈರಸ್ಗೆ ಅಸರು ಹುರಿತನೆಗ್ಗ ಅಲ್ಲುಮಫಹು ಲೊಲಾ ನೇಫತಾ ಆಂಗ್ಯಾಗ ಅಲ್ಲುಮುಂ ಹಿಮಬಿಹಿ ಫೆತುರೆ
7: ಬಯ್ಯ ದೆಕೊಳ ದಿಫಾ ಇಬಾರು ನಿಮ್ಮೀಹುಂ ಅದಿ ಮೀಸಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗೆ ದೆ ಡೋಸ್ ಫುರಿಹಮು ಕೊಫಾ ನುವಾ ಫರಾತಕ ಬಾಲಿ ಜಹಮುಗೆ ಫುರುಸಕ್ ಬೊಡು ಹಿಮಬಿಹಿಗೆ ಅಲಾಮತೆ ಫೆಣಿಜನಮ ಲಸ್ನು ಕುರವ ಸಿಹಿ ಫರುವ ಹೋದವ
8: ಅಹರ್ಮೆಂಗೆ ಬಹ ಸಕಾಫತ ಆದಕಾದಾಯಕ ತೆರೆಗ ಆದ ಬ್ಯಾವರ್ ಕಂತಕ್ಕೆ ಹುರೆ ಅಡವಹಾಲಂ ಬೇಣಂತ
9: ಹಾ ವರಪ್ಪೇಣು
1: ದಿವಿರಾಜಗಡ ಟ್ಯೂನ್ ಕೊಲ್ಲ ಅಂಗಾರ್ದೂಗೆ ಹವೀರ್ ಫಹಿಜ್ಜಾರ್ ಬುರಾಸದ್ದೂಗೆ ಹವೀರ್ ಹತರುಗಡ ಫನರಾಗ ಅದೇ ಆದಿತ್ಯದೋಗಿ ಹವೀರ್ ಫಹಿಜ್ಜಾರ್ ಹಮೇಕಣಿ ದಿವಿರಾಜಗ್ಯಾಡು

0: मुन्ना कोबा की है ना के देड़ा ही है
1: अल्हम्दुलिल्लाह मुन्ना रंगल खालो में देड़ा ही है
0: अफनस देड़ा ही है मुन्ना मुन्ना कोम वड़ा में के दक काफ़ूंग अता
2: मुन्ना थी है बुरको वेंडना हिंका में ने अफन थी कंको लन्ना
1: तिको दुं हाउ दहाई रंगल लाए तिहं मुन्ना एक ही आहो हाल बला फे मुन्ना रकांग कंको देन्ना है दी मुन्ना वरहा उपावे

0: हांगार अंगार दो मेंदुल कुरी इकार गड़ फणा रहे रिपीट एरे दियगट तिरियू अधि बुद्ध दुह केरे मेंदम पार गड़ तिरियू हांगार
1: हम एकनी दिवे राज्य चाडू
2: हालो कबा मेदु केने
0: वारा रंगल
3: वारा फक्का हम
4: मेदु तेहा रंगले नो
3: वारा बलिको
5: देंगे काला गोते
6: हम वारा बेस्टो
3: दे हाय हाय नो
2: एहुन तेरिंगे हाला हुआल ओलम फिल वाला वाह का दक्का लो मा
7: को मैं बुद्ध दुआ ही करेगा डो एकार कट सुम मिनट का तिवी राचे के डों कैनेस तेरी
4: मिया तो की ही
8: ने इंहा सातरस्ते का सालिस नोए किलोहर्ट्स मीडियम वेव आदि अट्टिया नोए मेगाहर्ट्स एफएम बैंड
9: कोम्मे उमुरका
10: कोम्मे फांतियका
9: कोम्मे गिंतियका दिवे ही राज्य के अड़ो इंहा सतरसे के साड़ी स्नोए किलोहर्ट्स मीडियम वेव
10: अड़ी हनोए मेगाहर्ट्स एफएम बैंड
7: गाड़ी रेगंडो अगड़ी 30 मिनट अड़ो समते गिन्दा वनी दिवे ही राज्य के अड़ो

Mi hada kurisa manuge fote. Eka maku hada riti ko gengule fote hen hive. Balala hivedze. Kaku ke tseba. Oh, Farida tage diary. Wow, Farida ta Mikhala stuff is gengule ta. Nue senge. Balala hivedze. Eka maku miwara private tse. पाला करनू आने। ओ नो, ए वेट्टू नी मी कोम फोटो है। वाह, फरीद तहादरी चे। मी फोटो का, दें नेब्बा इतुर फोटो है। ए वटी अल्बम इत्ता, बाला लम वेज्जे। Nice, beautiful. अरे नुएस दक्का है मी फोटो ता मी हो रही है दो. अब अधेस दक्का नी मम्मा या बाप्पा के अल्बम. फरीद अत्ता के अल्बम मी और नानी फोरुआ फा. रंगल हम अजय लागे बाला लानी. एक हम अकुमिया फुरे वेस हम ए डायरी बाला लाही बनी. एक हो रही अच्छा किया ही तुम क्यों रही अस्वानी की ने हादानी यहाँ प्राइवेट अच्छे बाला का वेस नुआने नो एक अमाकु देंगा ले.

0: हंगार
1: अंगार दो मिंदुल कोरी एकार गड़ फन रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूँ आदि बुद्ध दो हो केरे मिंदमो पार गड़ तेरी हूँ
0: हंगार
2: हम एकनी दिवे राज्य के अड़ू
3: එංහා 4940 kHz medium wave 8090 MHz FM band
4: දිවහිරාජ්‍යයේ අඩු

0: Miedo que gina.
1: Miedo que hine, gade miharu ekara gade tiris aminit salis hatar sekuntum yoni ngafa. Migadi kore medani, miedo que hine, ehem vima, Mariam Ibrahim ge duas tegen ahalama.
2: Assalamu alaikum, Mariam Ibrahim.
3: Walaikum salam.
2: Miedo que hine?
3: Miedo que hine, ya kame me sama, barabar.
2: Adum me se bahi vehama vara, ufaefe Mariam Ibrahim.
3: Ufaefe, ya kame barabar vima.
2: ऐहा बराबर को दिया मुफा वाद जहन हम रागड़ वाह कहते बने देख कौन कौन कंता के कॉल्ले में तो
3: मैं तो हम ऐसे पूरा कंदस्तंग हम करें उसीम बेल में देख गोती के हैं हैं कंदस्तंग करूं मैं ये मैं मुफा वाले ऐसी हवा धोए दीर का तो कहना गुलाब के खुली मज़े कुगा तो बर
1: उपलब्ध ही होने ehemi ma waram barabar ta
2: kene wani nasige hawa du meruta
3: waram mi
1: ehemi mti jehuni hawa du ga chuma is bala lan ta do
3: balanya balam ewar hawa den alkon wan dinuk
1: ade nukan
3: ade ewar ge hawa ade
1: ewar ge hawa ade nukan e haves mire ebuni do
3: ade
1: ehem ve ma miadu mi kurewunu kantatta hoge itura madama kuriyam mi duha कौन कहा गंदे तक तो रावा फमीरी
3: जेहूं हम ऐरा का जेहूं नहीं है जेहूं का मैं भी हम कुरे वे तो गाड़ा आले मस्त के कुरान अगर वर वेलु वे लुला ना इंशाल्लाह
1: ऐहम वी माय गाड़ी एक घाम कुरी में ते वी कामे वेज्जे या हम फर्स्ट जेहूं में नेती कुरी में ते लाने दो एक
2: कमका
3: अरे
2: नसे दें शोगा
3: नसे ये नूने
1: मी मारी मारियम इब्राहिम
2: नसे क्या वाक थे कि नसे ये क्या दिया ने का
3: एक नुवाने
1: मारी के सीर रुलावा मारी मारियम हाँ से कोफ़ोइल लावा
3: अरे
2: आडू हाला ही तो मेर तीन ही तो एक आडू हाला तो घरे बजे एक कंधा कोल्ला
3: हाँ देखो पुरे समय में आड़ों के बेफुल ना मेरे दिगर नुकुरा ना कॉम्पोरेस टीम के बेफुल ना दें हियाली बाग मुनीरा या से ऐसे मरे को आना जब अलिया हम दो ऐसे बिल्कुल दूबरा मासे लाइला या से दें मिनिमम दें ओके
2: ना से एक अंतिम आसे का तेरे ना दिफ़िना हवाल करो मैं उल्लोनी
3: सुन कर
2: आने का ना से अपने मारी हम तो मारी के रहा था मैं उन्हें मारी के दुआस दुआस रेट कोरा दिहाय कुं किहावरे तो है देनी
3: दिहाय कुं हाँ मत दिहाय दे दिहाय कुं जिला कोल्ली जानू नहीं क्या मादेन नुकुरे वैन में आ दको
2: नुकुरे वैन दो
3: आज दिहाय कुं ली बिताने साथे कर
2: आ है मैं बराबर बराबर भी मत आदो दिहाय कुं साथे कर ली बैन यादे
3: आज आज
2: ऐ मरना से वरा उफावे न मारियम वरा उफावे से मारियम बदल भी मत
3: आज आज आज
1: मरा बाज़ वे रेगंड कह देंगे
3: मरी बाज़ वे रेगंड कह देंगे आधा पूरे मादम सही
1: आधा आधा वकील लाने के ऐहम वी मरी के लावा मिहाई साबुं जहाला